जो जो पाथौ नेपाल सम्बन्धिन्छ सौपी खुद कौलाथो पञ्चमी थो रेडियो नेपाल ख आनेना दिशा जिरुबी पाखाई नेपाल भाषा या समाचार। संसदीय सुनाई समिति सरकार सिफारिस यागु झिन्सोमा मध्ये झिमा राजुत्या ना अनुमोदन यागुदु समिति मिग सिंह दरबारे चुङ्गु बैठकमा भारतीय नीति प्रस्तावित डाक्टर निश्चर नाथ पाण्डे चिनिया नीति कल्याण राज शर्मा अमेरिका नीति चिरञ्जङ थापा बेलायती नीति गौरव शमशेर जङ्ग बहादुर राणा व जर्मनी नीति सरु जोशियाता राजुत्या अनुमोदन यागु खसा इजरायल नीति सुरेश कुमार कर्ण ओमान नीति पद्माक्षी राणा दक्षिण कोरिया नीति प्रतापक डाक्टर संगम श्रेष्ठ स्पेन नीति प्राप्ति शेरचन व श्रीलंका नीति प्रस्तावित रातु डाक्टर मञ्चना कुमारी झायाना सुनवाई समिति बैठक सर्वसम्मति अनुमोदन यागुदु थोयान समिति बैठक श्रीलंका नीति प्रस्तावित रातु डाक्टर मञ्चना कुमारी झा थप्न रातु नियुक्ति जुई थुङ्कानी नेपाली बौद्ध अध्ययन इन्जिनियरिङ व मेडिकल शिक्षा अध्ययन यायता वैपी विद्यार्थी लिया उपोकेता कुत यागु बचौ पङ्का दिगु खस साउदी अरबिया नीति प्रस्तावित गिरिबहादुर सुनार मलेसिया नीति प्रस्तावित चुडामणि खरेल व जापान नीति प्रस्तावित जिज्ञान कुमार थापा दती बामलागु दोपन लागुली संसदीय सुनवाई दिका तगु दुसा सुनवाई समिति मलेसिया नीति प्रस्तावित राज चुडामणि खरेल व जापान नीति प्रस्तावित जिज्ञान कुमार थापा सुनवाई न दिका तगुदु अध्ययना कार्ययोजना बेधुङकानी सांसद पिसा वेक विरुद्ध अझ उप उजुरी वैगुली आपला अध्ययन या नाजक सुनवाई निहजाकेगु प्रस्ताव या नदिगु दुसा बैठके सांसद पिसा मलेसिया नीति प्रस्तावित राजुर खरेल दी झापाया सुन स्थानीय तह नापा अनुदान मिले याना बी धका लाखौं डेफा ठगे यागु आराधु सिफारिस जुई थुङकानी डेफा युत बित सङ्गु यो सामाजिक सञ्जाल चल्याना ब्ल्याकमेलिङ यागो मेन पावर कम्पनी नपा मिले जुगु व मेन पावर कम्पनी याहे गाडी छगु धका उजुरी प्रमाण दोस्रो नपा वोगु ध्या धुङ्कानी सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ अझ उप अध्ययन सुनवाई याना जक ज्यान ज्याकेगु बसम्बिया दिगु दुसा अथियाना जापान नीति प्रस्तावित थापाया जापान पीआर दुगु दासेन सांसद सन्यासल हुने धुङ्कानी अझ उप अध्ययन यागु दासेन उपसभापति श्रेष्ठ सुनवाई दिका दिगु ख सङ्घ प्रदेश व स्थानीय तह दति राज्य शक्ति बाँडफाँड सह अस्तित्व व समन्वय संविधान सक्कया संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन खे ब विषय अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन पुङ गुदु कोशी प्रदेश सरकार गोसा गगु निका तमु जालिपा सार्वजनिक यागु मङ्का घोषणा पौसा नेपाल संविधान व्यवस्था या कथा सोङ तह या सरकार सञ्चालन जुया संघीय शासन प्रणाली या त अझ दिशी लागेको विशेष एक बद्धता पङ्क गुदु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ना पाठी थि यागु देया रादुत पिसान थगु ओहोदाया प्रमाण दसु दुतबिया दिगुदु राष्ट्रपति भवने मिग गोसागको विशेष याजोसा नेपाल नीति युरोपेली संघ प्रतिनिधि मण्डलीय आवासीय राधु चार्ल्स व्हिटली राष्ट्रपति पौडेल नापा ओहदाया प्रमाण पत्र ललहना दिगु खसा अथियाना इन्डोनेसिया घाना सुडान ब्रुनाई या गैर आवासीय राजदूत पिस झोलिक लिसियोवाती कोजो बोन्सु मोहम्मद अब्दल्ला अली इल्टोम व सिति आर्निफ रिज विन्ती हाजी मोहम्मद जैन पिसान थतङको ओहदाया प्रमाण पत्र ललहना दिगु ख ज्यासोले नेपाल सरकार उच्च पदस्थ अधिकारी पिन्सम बोतिकया दिगु ख भोटे कोशी खुसीबा सह लिचोला पिन्ता खुला दुने अस्थायी आवास लल हाइगु जुगुदु नेपाल वातावरण पत्रकार समूह मिगये गोसागोगु भोटे कोशी खुसीबा पुनस्थापना निहेस राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेती खुसीबा नापा स्वत दुने स्थायी आवास देका लल हागु आज नापा ज्या निहजाकागु ध्यादिगु दुसा खुसीबा लिचोलागु रसुवा नुवाकोट गोर्खा धादिङ या न्यादो सचिव झिङखुमा छ्याच्या त स्थायी ब्याचुनेगु व्यवस्था या न्ह अस्थायी आवास देखेगु ध्यादिगु ख सरकार खुसीबा लिचो लापिङ छ्याच्या त न्याला तक लचियङ्क झिङ्यादो धेवाया हिसाब राहत लल ह्यागु कोचिगु न ख सरकार भोटे खुसी खुसीबासा लिचो लागु रसुवा नुवाकोट धादिङ्या झिङ धादिङ्या
पेदो सछि च्याखा छेजया छेखा पटिक पी यादो ढेवाया हिसाबमा ढेवा ग्वाली यागो दु विश्व खाद्य ज्याजो डब्लु एफ लल हागु ढेवा दोहोरो पना मजुई के त छगु द्वार प्रणाली पाखे इनागु प्रधानमन्त्री हो मन्त्री परिषदीय कार्यालय थागु दुसा कार्यालय कथा स्थानीय त नापाया समन्वय सन्डिचो लागु छेजया त मसिका रसुवाया न्यामा नुवाको ट्यापेमा धादिङया निम याना झिन्छमा छेजया त राहत ल लागु खसा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण जुइत ल्याउँदुगु अथे झिम्पेस छेजया त न सुनु दुने ढेवा इनेगु याना सरकार याना सङ्गुदु नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भोटेकोशी खुसीबासन लिचो लापी मनोते त पुनस्थापना ज्याता थ्याबी मागु ध्यादिगुदु नुवाकोट्या विदुर नगरपालिका पिपल टारे ठुलो गामे नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्ट्या कुतसा देखको अस्थायी आवास या ताँचा खुसीबा लिचो लापी छेजया त ललहना दिसे नयाँ अध्यक्ष लिचो लापी मनुतेगु जनजीवन सामान्य देखे त पुननिर्माण ज्याके मागुली बबिया दिल नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद या सन् 2027 तक या ज्यादले अनि तीन सदस्य निर्वाचित जुगुदु न्यूयोर्क राष्ट्र संघ मुख्यालय मंगलबार जुगु निर्वाचन नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाको फागु सचिव चेकु भोट मध्ये सचिव नेसोकु भोट कासे एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय समूह निर्वाचित दे मध्ये सक्कसिबे उप मत क्याता तालागु ख थमोनिया ज्ञानुया दि देवी स्कन्द माता पूजा आज चर्चा कहना सङ्गुदु भगवान स्कन्द कुमार कार्तिकेय मचा बले सधा मूल्य तया मतिना याना चुङ्गुली नवरात्रि ज्ञानुया दि या त स्कन्द माता नास पूजा याइगु हना देछाइगु चलन्दु सा स्वनिगले थिति भैरव्या पूजा याई धासा या टेकुई चोमा पसली भैरव्या पूजा आज यैसा अध्ययना गुहेश्वरी भद्रकाली संकटा नक्साल भगवती शोभा भगवती विजेश्वरी दक्षिणकाली व खोपे थिति बाराया पूजा याईको चलन दुसा खोन्या यलया खोन्या ऐतिहासिक सिकाली जात्रा उले ज्या थौ जुया सप्तमी खुनु कोचाकीगु चलन नदु मोहनी व सोन्टी छट नपाया मु नखचकाया त ध्याने तया ये उपत्यका सोदो यास खुमा प्रहरी छ गुदु नखचकाया इले जुइ फैगु आपराधिक झाका गतिविधि नियन्त्रण याना मनोते त सुरक्षित व ढुक्क जुया नख हनेगु लकस मिल्या त प्रहरी विशेष सुरक्षा योजना क खागु ख नेपामी तेगु तधङ्गु नखा मोहनिया लसत्या काभ्रे पलाञ्चोक जिल्ला न्याङ्क असोज 31 निसे कार्तिक 9 गते टकटी पर सञ्चालने पङ्गथना बिगुदु जिल्ला सुरक्षा समिति असोज 27 गते चङ्गु बैठक या कोछिना कथा असोज 31 निसे कार्तिक 9 गते तक्क जिल्ला न्याङ्क टिपर न्याके मदैगु मन्याके त इनाप्यानागु सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नापा सूचना अधिकारी महेन्द्र विश्वकर्मा जानकारी बियादिल ऊर्जा जलस्रोत व सिंचाई मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ थगु खुला याङ्कया कार्यकाल या सचिव सुई नेगु धलैया ज्या सार्वजनिक याना दिगुदु मन्त्री श्रेष्ठ मिगा गोसागोको पत्रकार तमु ज्यास ऊर्जा लागया त दे या आर्थिक विकास लिधसा देखिगु आज नपा विद्युत उत्पादन प्रसारण बजार त व्याकिगु आन्तरिक खपत वृद्धि या त एकीकृत कथन हिज्या कागु ध्या दिलसा प्राकृतिक विपत्याग हुने ऊर्जा पूर्वाधार श्यङ्कगु हाठ्या बिगु सेवा पुनस्थापना व विकास निर्माण ज्या या त मटिक हिज्या कागु मन्त्री श्रेष्ठ नेथना दिगुदु नेपाल टेलिकम नागरिक तेस योगु थासे सिम कार्ड लल ह्यागु व्यवस्था मिलियागुदु सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा हिगा मन्त्रालय से हुलाक सिम सेवा उले जयना दिगु ख सेवा कथन ग्राहक अनलाइन आवेदन बिया थगु नुगु प्रिपेयर फिजिकल सिम कार्ड हुलाक पखे छे या लुखा तक्क क्या फैगु व्यवस्था जुगु कना दिलसा टेलिकम भ जाँचे यागु आवेदन स्वीकृति या थुङ्कानी अनलाइन सय भुक्तानी या फैगु धागुदु जाँचोले मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा हुलाक सिम सेवा डेलिभरी या इले यी चिहा केता नापा उचम ब्यादिगुदु अवैध कथा नेपाले धुहाँ वया सोनी गया थि थासे सुसुका चना चौपी झिमा विदेशी मनोते त चोङ्गुदु सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल इन्टेलिजेन्स ब्युरो मिग उमिता नियन्त्रण कया अध्यागमन विभाग या त ल लागुदु जोपीले पिङ्यादा धुमा मोहम्मद मुख्तर हुसैन
सुई गुदुमा अब्बास अली, पी गुदुमा रफिक अलाम, पी दुमा मोहम्मद अरिफ सोशन, सुई दुमा अजीजुल, नी गुदुमा अब्दुल, सुई नेहदुमा मोहम्मद आलम करीम, सुई खुदुमा मेहताब मंडल, नी दुमा रातुल इस्लाम, सुई दुमा बसर खान पी जुगु जिल्ला सशस्त्र प्रहरी सह प्रवक्ता शैलेन्द्र थापा जानकारी व्यादिगु ख। वासा व्यवस्था विभाग विश्व स्वास्थ्य संगठन देखको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड टिआरएस या कथ क्राइटेरिया मगागु पिन हेगु कथा या वास या पैठारी नुगु उत्पादने पङ्गथना बिगुदु। वासा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक स्तरीय को छिना कथा वास तेगु उत्पादन अनुज्ञापन पत्र, वास मिगु लल ह्यागु इनेगु प्रमाण पत्र, वास पैठारी दर्ता प्रमाण पत्र वा वास पैठारी सिफारिस नपाए या त खारेज नागु धागुदु। सरकार सामुदायिक विद्यालय या त कया विद्यार्थी अभिभावक या उपया चङ्गु आकर्षण या त अझ सेलाकेगु आज नपा पूर्वाधार विकास योजना नेजा कगुदु डेनियङका सचिव गुगु सामुदायिक बनेकुथी या त थ्याबिया भौतिक पूर्वाधार तब्याके गुज्या नेजा कगुदु। शिक्षा लागाय रूपान्तरण अनि तीन थो ऐतिहासिक पला जुगु धासे थोहे हेना चङ्गु आर्थिक दे वो विद्या वो बनेकुथी तेगु संरचना सेला केगु नीति मुक खुगु अर्बा ङे पेङ्गु करोड थेबा विनियोजन यनागु शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेललाई जानकारी व्यादिगुदु। नेपाल छगुजक शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षके नाउर व झारलिया ल्याख्या त सङ्गुदु शिकार या कोटा निर्धारण या त ज्ञान पतिका नाउर झारलिया गणना यासे आरक्ष प्राविधिक व आरक्ष कर्मचारी या त नेगु तल शिकार ब्लके मतगणना या नीति छेला चुनागु व ल्याख्यागु ज्या या त सनागु सुचम्बिगु खस आरक्ष कार्यालय कथ थुगुसी आरक्ष कार्यालय कथन थुया न्ह 2079 सन यागु मतगणना दोची निसव गुइमा नाउर नेसव पीपेमा झारलुया वगु जानकारी बिगुदु। शरद ऋतु सुई छगु हिमाल आरोहण नीति दोची गुई चमासिन

लसो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्री सम्मत 2862 तालो सोकराती लाला छेपाङा विक्रम सम्मत 2083 साल असोज लाला छेपाङी चुइसेकु नारे बिहिबार छु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्दा डेनमुला ना सूर्य मोक्तान युल्चोहो रामचन्द्र पौड्याल दा आदिवासी जनजाति आयोग से तिनी दिङ्गिकला प्रतिवेदन पेश लासु बमला युल्चोहो गेदिम शीतल निवास रे तिनी सँगमा गेखोरी आयोग लाचोहो रामबहादुर थापा मगर से नोर्दिङ 2082-83 दिङ्गिकला प्रतिवेदन पेश लाबमला बिसे युल्चोहोला लोनखाङ सिपाङ बहिन्ना नेपाललाई हुल्ठिम्ला धारा ग्याजङी कुचुसे ब्लिरी संवैधानिक आयोगला प्रतिवेदन युल्चोहोदा पेश लानुन्तोबा संवैधानिक ठिम्मुला नोर्बोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले से नेपाल से नाभा प्राकृतिक विपत्ति लिचला पुनरुत्थान तेन जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माण नि नेपाल द रोला सिपिनमारी एसियाली विकास बैङ्क द मोइजेनला पमला थाइल्यान्डला ग्याल्सा बैङ्क क्रिसेङ बनमुबा विश्व बैङ्क थेन मुख्युल मुद्रा कोषला चिसाङरी पोखिनमारी थाइल्यान्डी दोस्युबा नोर्बोन डाक्टर वाग्ले थिन एसियाली विकास बैङ्कला चोहो मासातो कान्दा रूप्तासे लिङ्गबलामा रोला सिपिनमारी मोइजेनला सुबहिन्ना रूप्तामा नोर्बोन डाक्टर वाग्ले से विपत पुनरुत्थान जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माण थे नेपाल से खाइमा दमन नर्थुम द ज्यावसोबारी खाम्बा गेदा प्राथमिकता पिनमारी खाम्बा स्रोत परिचालना बारी बैङ्कला चोहो मासातो खान्दा दा मोइजन लासु बताम नोर्बोन डाक्टर वाग्ले ललोन खाङ से पाङ बहिन्ना रिमटिम पर्यटन थिन नागरिक उड्डयन ब्रुन खड्गराज पौड्याल से दाङला टरीगाउँ थिन मुगुला रारा विमानस्थल विकास लभा थिन शोभा सम्बन्धीलाई अध्ययन प्रक्रिया ती बरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान्द निर्देशन दोन शुभमला गोर्गिनुन विमानस्थल केलोलो कोर्बा थिन निरीक्षण लासुबा लिचा ब्रोन पौड्याल से तिनी ब्रोन खाङरी क्यानला दान पोका दिथेन काठुई लाभा लिचा अध्ययन प्रक्रिया ती बारी निर्देशन दोन शुभिन्ना क्यानला अनुसार ब्रोन पौड्याललाई गोबाङरी प्राधिकरण थिन नागरिक उड्डयन थुम्तेन सम्बन्धित दान पका देला टोली से चुनुन असोजलाला निचुसे गिकुनुइन्से निचुसे ढुकुनुदोना नेपालगञ्ज दाङ रारा थेन जुम्ला विमानस्थल कोर्बा थेन निरीक्षण लाबुमुबा रोङसाब्लोन शिशिर खनाल दा इन्डोनेसियाला गैर आवासीय ग्लेबोन लिस्ट युवती से रूप्त सिलिङमला शुभमला तिनी ब्लोन खाङरी रूप्तमा ब्लोन खनाल से नेपाल द इन्डोनेसियाला गैर आवासीय ग्लेबोन्डी नियुक्त तबारी ग्लेबोन लिस्ट युवती दा बधाई दोन छुवान रोला गे दुई ज्याब तबारी खाङ्गै बिसे ज्याबडानमा दोन छुभमला लुइथेन चाबासे स्वच्छता ब्लोनखाङ से आमा थेन केलोलो नाबा जत्तुकुला याङताम पिनबारी खाम्बा नेखुवाबा नेखुवाबारी बाङ्ला दोबा थेन रोलासे पिन्दोबा ताम दिन्छी मातृ शिशु लुइ गेन्दुन गेखोर सेङ्बा निर्देशिका 2083 जारी लाबुमला चुपिम भाङ्गा छ लुइ गेन्दुन्डी मातृ शिशु सेवा अभियान निर्देशिका 2073 गेखोर्दा अझ व्यवस्थित थिएन प्रभावकारी सुबारी छार निर्देशिका जारी लाबुमला बेसे ब्लोनखाङ से पाङ बहेन्ना छार निर्देशिका सही सुत्केरी थिएन केलोलो नाबा चाजकोला दा लुई गेन्दुन्से अनिवार्य तेन्नुन तोबा गोर्चुइचुई मापदण्ड शोभमुला अस्पताल थिएन लुई गेन्दुन्डी मातृ शिशु सेवा पिनमारी आमा थिएन केलोलो नाबा चाजकोला स्वास्थ्य याङताम थिएन आवश्यकता अनुसार सेवा पिनमारी सरकार से निर्देशिका बाबा हिन्ना नेपाली काङ्ग्रेसलाई चुइसे गाछा ग्रेनवाललाई मियो गे समिति दामबारी सङ्घमा चुनावलाई बेनन परिणाम धारेदोनामा खासेला तापमला निर्वाचन समितिलाई लुन्छन् राजु कटुवाल से तिनी मुनादोनामा बेनन दानलाई परिणाम खासी जिन्छल मला बेसे सुनबा हिन्ना काङ्ग्रेसलाई छार गोबाङ दामबारी सङ्घमा निर्वाचन रि रेवा चोहो रोचोहो ग्रेन लुन्छन् थिएन रो ग्रेन लुन्छनलाई भोट बिसाम झ्यासी जिन्बमला दान्दे मियो मुल्बिगदेला खुल्ला जामेकोला प्रदेश समावेशी थिएन स्यान्सोमुहला भोट झ्यापनमुला खुल्ला मियो मुल्मी होनाला गोर ब्लिचु सिंह दान्री प्रतिस्पर्धा तापमला निर्वाचन समिति से योरेबीमा योना भोट ज्याबारी वाङमा से बाँकी परिणाम तिनै सार्वजनिक लाबारी तयारी लाभिन्ना नेपाल रेड क्रस सोसाइटी से भोटे कोसिरी खापा भार प्रभावित थुब्ला हिलबदा टाङ्गा थेन स्यान लामन सेगदे रोला सेपिनमारी लोलो लोलो गेखोर सेङसेला थापुमला सोसाइटी से भाल से ब्योङ्न लाबागदेला माइबा लिसा टाङ्गाला छ्याम्री प्रतिकारियला लोलो लोलो गेखोर सेङ्गेला बहिन्ना रेड क्रस थेन रेड क्रिसेन्ट सोसाइटीला मुख्युल महासङ्घ आइएफआरसीला ग्रेन लोन्छेन थेन ग्रेन कार्यकारी अधिकृत जगन चापागाई से केलोलो भाल प्रभावित थुम
पर्सि जिन मालेछ रु लसेपिनमा गेखोर गर्दै सेन्सेला मुला विषय सुङमा हिन्न नेपाल रेड क्रस सोसाइटी थिएन विदुर नगरपालिकाला गुङरी भाल प्रतिकार्य थिएन पुनर्स्थापनाला बारी सम्झौतालाई मुला सम्झौता अनुसार रेड क्रसले भालडी परप्तसी माबा यागर जामेकोला अभिभावक माबा जामेकोला जाजकोला थिएन गान्बा दिमथेमेदा दान्दे लाख घिक टाङ्गा थिएन तोङ नि दिमथेमेदा तोङचुई सेङा टाङ्गा पिन्सेला ताप मुला हिन्दू धर्म तेनमा गदल ग्रिन प्रिबा दसैँ गाम गाम्रे दोखामा याम्बु उपत्यका गाम राङराङला दिम रिनिबा मि रेदाङ छैन लेसिटे बम्बला याम्बु रेटी से ब्रिबोडोबन बोबा लोलो लोलो गे थिइन् लोलो लोलो छोङला बन खापा गर्दै दसैँ दाङमारी राङराङला नाम सरी निबताङ लेब हिन्न याम्बु उपत्यकाला लोलो लोलो मुर ग्याम युल्ला लामन ग्लारी निबा तुनमा थिएन रेगमा दुरीला सार्वजनिक यातायात गर्दै दान्दे लामन भ्रजिटिबा राङबारी खाम बम्बला दसैँ राङला दिम थेमे थिएन गदै रूपतासै ग्रेन प्रिबा दसैँ दाङबारी निबा मेकदैसे याम्बो खाबताङ रे थाङसे ले सिटेबा हिन्न याम्बो उपत्यका ट्राफिक प्रहरी गेदिमला डिएसपी रविन्द्र खनालसे दसैँ दाङबारी याम्बोला लोलो लोलो मुर ताबान घटस्थापना कुनु हिन्सै लामान मिसे याम्बो खा सिटी बमुला बेसै सुङ बमुला याम्बो ग्याम दसैँ दाङबारी फर्पिङ नागढुङ्गा थानकोट भीमढुङ्गा तिनपिप्ले साँखु भक्तपुरलाई जगाती थिएन ललितपुरलाई हेटौडा मुर ताबान मेगादै फेरक्याप नि सिटी बमुला रेधाङसे लेबन खाबा जनसङ्ख्यालाई चाप्दा सडक यातायातसे चिक्केन ताबारे आखम नटिबा दान्देला चुदुइरी याम्बु उपत्यकाला ट्राफिक व्यवस्थापन ज्याबसोबारी सरकारसे रत्न पार्क भक्तपुर मेट्रो रेल परियोजना सोबमुला सरकारसे चु परियोजना त गाछा बोरबारी याम्बु उपत्यका सहरी यातायात ठिम गुरु योजना 2050 सोसी सार्वजनिक लासिजेन बमुला जापान मोक्युल रो नियोग जाइकाला नोर्थेन प्राविधिक रोरी सोमदिङरी सोसी जिन्ना लाभा गुरु योजना सोबहिन्न पूर्वाधार विकास लोडखाङलाई रोलोन छेन्थेन विकास सहायता समन्वय महाशाखालाई ग्रेन्पो सुशील बाबु ढकालसे याम्बु उपत्यकालाई यातायात ठिम्द ज्याबसोभरि जाइकाला रोरी गुरु योजना सोची चिन्मा थेन्थेनुन गुरु योजना नाङ्ग्री रत्न पार्क भक्तपुर मेट्रो रेल परियोजना दा सङ्घीय लाभा हिन्न विषय सोङ्सोबमुला ओसेम बुढी गण्डकिरी खाबा भाल प्रभावित थुङ्याम तिनी दोनामा तोङ्गिक बिमा लामा मिदा हेलिकप्टर चाहिँ उद्धार लाभ मुला निबिनी रे आइतबार कुनु हिँड्छे तिनी दोनामा तोङ्गिक मिन्द ब्लिचुसे ब्लि मिदा उद्धार लाभ मुला विषय रोक्रेन्जोङ अधिकारी नेत्र प्रसाद शर्मा चाहिँ सुङ्बा हिन्न उद्धार लाभका देशे मिन्दो निश्चय उद्धार लाभका देरी मेन्दो निश्चय फिर्का भिल्ला पर्यटक मुला विसिनन् रो ग्रेन्जोङ अधिकारी शर्मासे सुङमा मुला भालसे गोर्खारी निभा ग्याम थेन चाम्रे क्षति तान लाभले छ थेथुम्री लामन मि फसप्ता बुबा नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर से थिनिका दे त उद्धार लाभा हिन्न बिसिनन् रो ग्रेन्जोङ अधिकारी शर्मासे सुङमा मुला चुनन् साङ्गुर गदेला छ्याम्रे तिनी त तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लासुगु लसो फ्याफुल्ला

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास ठीक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषा में समाचार। नवरात्रा के पांचम दिन पूजा कोठली में नौ दुर्गा मध्य के पांचम स्कंद माता के विधिपूर्वक पूजा आराधना कायल जा रहल अछि। प्रत्येक वर्ष आसिन शुक्ल पंचमी अर्थात दुर्गा पक्ष के पांचम दिन स्कंद माता के विधिपूर्वक पूजा आराधना कायल जाइत अछि। स्कंद के अर्थ सनत कुमार रहल अछि। स्कंद माता के प्रतिमा लक्ष्मण में ई सिंहासन में वैशल आ दुनू हाथ सँ कमल पुष्प रखबाक भऽ सकबाक विवरण भेटित अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले नेपाल भुगने प्राकृति विपद पश्चात के पुनरुत्थान आ जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माण के नेपाल में सहयोग करबाक लेल एशियाली विकास बैंक के आग्रह कयलनि अछि। थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में जारी विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वार्षिक सहभागी बैठक में सहभागी हेबाक लेल थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में रहल अर्थमंत्री डॉक्टर वागले आ एशियाली विकास बैंक के अध्यक्ष मासातो कांदा बीच भेंटवार्ता में आग्रह कयल गेल अछि। एहि अवसर पर अर्थमंत्री डॉक्टर वागले विपद पश्चात के पुनरुत्थान जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माण आ नेपालक दीर्घकालीन आर्थिक प्राथमिकता आगू बढ़ेबा लेल स्रोत परिचालन करबाक लेल बैंक के अध्यक्ष मसातो कांदा के आग्रह कयने हुनक सचिवालय जनौलक अछि। भेंटवार्ता में बाढ़ पश्चात उद्धार में सहयोग करबाक लेल आपातकालीन अनुदान शीघ्र स्वीकृत आय के बद्धता जाहिर कयल गेल में मंत्री वागले एशियाली विकास बैंक प्रति नेपाल के दिशा कृतज्ञता व्यक्त कयलनि। एहि अवसर पर अध्यक्ष कांदा नेपाल के विकासक लेल सहकार्य स्वयं उच्च प्राथमिकता में रखने बतौने छलथि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल संग इंडोनेशिया के गैर आवासीय राजदूत लिस्टोवती शिष्टाचार भेंटवार्ता कयलनि अछि। मंत्रालय में आई भेल भेंटवार्ता मंत्री खनाल नेपालक लेल इंडोनेशिया के गैर आवासीय राजदूत के रूप में नियुक्त भेल राजदूत लिस्टोवती के बधाई दैत हुनक सफल कार्यकाल के शुभकामना व्यक्त कयलनि। भेंट के अवसर पर दुनू पक्ष नेपाल आ इंडोनेशिया बीच रहियाल मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध सहयोग के थप सुदृढ़ बनेबाक विषय में विचार विमर्श भेल परराष्ट्र मंत्रालय जनौलक अछि। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल संग नेपालक लेल पाकिस्तान के नवनियुक्त राजदूत मोहम्मद आमिर खान शिष्टाचार भेंटवार्ता कयलनि अछि। मंत्रालय में आई भेल भेंटवार्ता में मंत्री खनाल हुनका नियुक्ति के लेल बधाई दैत सफल आ उपलब्धिमूलक कार्यकाल के लेल शुभकामना देने मंत्रालय जनौलक अछि। एहि अवसर पर दुनू पक्ष नेपाल पाकिस्तान बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध के थप सुदृढ़ बनेबाक तथा आपसी सहयोग के क्षेत्र सब विस्तार करबाक विषय में विचार विमर्श कयलनि। दुनू देश बीच रहियाल मैत्रीपूर्ण संबंध के थप प्रगाढ़ बनबैत पारस्परिक हित के क्षेत्र में सहकार्य अभिवृद्धि करबाक विषय में ओ हुनका सबके बीच में विचार विमर्श भेल छल। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय माय आ नवजात शिशु के अधिकार सुनिश्चित करत स्तनपान के संरक्षण प्रवर्धन आ सहयोग करबाक लेल मातृ शिशु मैत्री स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम संचालन निर्देशिका 2083 जारी कयलक अछि। एहिसँ पहिने स्वास्थ्य संस्था में मातृ शिशु मैत्री सेवा अभियान निर्देशिका 2073 के कार्यक्रम के थप व्यवस्थित आ प्रभावकारी बनाबा नया निर्देशिका जारी कयल गेल मंत्रालय आई प्रेस नोट मार्फत जानकारी देलक अछि। एहि निर्देशिका सँ लड़कोरी आ नवजात शिशु के लेल स्वास्थ्य संस्था अनिवार्य रूप में पालना करबाक 10-10 मापदंड निर्धारण कयलक अछि। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था में मातृ शिशु मैत्री सेवा सुनिश्चित करत माय आ नवजात शिशु के स्वास्थ्य अधिकार आवश्यकता हिसाबे सेवा प्रवाह करबाक लेल निर्देशिका के मुख्य उद्देश्य रहल अछि। निर्देशिका हिसाबे प्रसव के क्रम में माय चुनने परिवार के सदस्य के संग में रह के व्यवस्था करय पड़त। ऐसा प्रसव के समय माय के मनोबल बढ़ेबाक आ बच्चा के सुरक्षा में सहयोग पहुँचत से अपेक्षा कयल गेल अछि। अहिना बच्चा जन्म लेलाक बाद नवजात शिशु के माय से अलग नहि राखि माय के बेड में रखबाक आ सक धरि शीघ्र स्तनपान करेबाक व्यवस्था के प्राथमिकता देल गेल अछि। निर्देशिका माय के दूध के प्रतिस्थापन करय वाला समान बिक्री वितरण नियंत्रण 2049 के प्रभावकारी कार्यान्वयन में सहयोग करैत माय के दूध के विकल्प के रूप में प्रयोग होवय वाला समान के बिक्री वितरण आ प्रवर्धन के नियमन करी ककर स्तनपान के संरक्षण आ प्रवर्धन में सहयोग करत। अहिना लड़कोरी आ नवजात शिशु स्वास्थ्य संस्था से डिस्चार्ज भ कर घर घुरलाक बाद हुनका सबके स्वास्थ्य के अवस्था के संबंध में जानकारी लेबाक आवश्यक परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध करेबाक आ संभावित समस्या के समय पहचान करबाक लेल स्वास्थ्य संस्था में संपर्क व्यक्ति फोकल पर्सन तुकबाक व्यवस्था कयल गेल अछि।
दवाई व्यवस्था विभाग इम्यूनो प्रेसेंट आ शरीर के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के कम करवाक वा दबाव वाला दवाई वर्ग के दवाई के बाजार में बिक्री वितरण तथा प्रयोग में कोनो रोक नहीं लगायल गेल स्पष्ट कैलक अछि। विभाग रोगी के चिकित्सक के परामर्श हिसाबे बाजार में उपलब्ध दवाई नियमित खाए के लेल आग्रह करत। औषधि के अभाव होबाक आ बाजार में रहल दवाई के बिक्री वितरण बंद कायल गेल एहन भ्रामक समाचार के पाछू नै लागल लेल अनुरोध कैलक अछि। विभाग आई प्रेस विज्ञप्ति जारी करत तोकल गेल समय भीतर जोखिम मूल्यांकन संबंधी कागजात पेश नै केने वा निर्धारित मापदंड पूरा नै केने 47 प्रकार के दवाई के नया उत्पादन तथा आयात में रोक लगायल गेल जनौलक अछि। अइ दवाई के दर्ता प्रमाण पत्र सेहो खारिज होब के कहल गेल बावजूदो इससे पहिने ही बाजार में आबि चुकल वा बिक्री वितरण में रहल दवाई के बिक्री तथा उपयोग में कोनो प्रतिबंध नहीं रहल विभाग स्पष्ट कैलक अछि। अंग प्रत्यारोपण कैने तथा दीर्घकालीन रोग भेल रोगी नियमित सेवन करय वाला दवाई के आपूर्ति में अभाव होब नहीं देबाक लेल विभाग प्रतिबद्ध रहल विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। विभाग के हिसाबे दवाई के गुणस्तर आ सुरक्षा के सुनिश्चित करैत एक दवाई के प्रभाव दोसर दवाई में पड़ सकबाक जोखिम अर्थात क्रॉस कंटामिनेशन न्यूनीकरण करबाक लेल अंतर्राष्ट्रीय मापदंड हिसाबे आवश्यक व्यवस्था लागू कयल गेल अछि। एहि के लेल विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्राविधिक मापदंड अनुरूप जोखिम व्यवस्थापन सफाई प्रमाणीकरण शीघ्र हवा आवागमन प्रणाली तथा स्वास्थ्य में आधारित जोखिम सीमा पालना करबाक व्यवस्था कयल गेल विभाग जनौलक अछि। गहवाबाई मंदिर परिसर में घट स्थापना समय से अधिक संख्या में भक्तजन के भीड़ लागल अछि। एहि मंदिर में घट स्थापने से अष्टमी धरि भक्तजन के भीड़ लगैत अछि। माई स्थान मंदिर गहवा माई व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष नरेंद्र शाह परसा बारा रौतहट सरलाही महतरी मात्र नहीं भ मध्य प्रदेश लगायत भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र से सेहो अधिक संख्या में भक्तजन एतर दर्शन करय के लेल अविछत से बतौलन। ओ गहवा माई मानल स्वरूप बलि चढ़ेबाक जानकारी सेहो देलनि। शाह के हिसाबे प्रत्येक वर्ष महाअष्टमी के दिन लगभग 4000 के हराहरी में पशु बलि चढ़ेबाक परम्परा रहल अछि। एहिना महिला के मनोकामना पूरा भेलाक बाद अथवा परिवार के सुख समृद्धि परिवार के दीर्घायु संतान प्राप्ति के लेल घर में बनायल गेल शुद्ध परिकार आ फल फूल राखि कऽ खोइच भरय के परम्परा सेहो रहल अछि। बारा के विभिन्न सीमा नाका में सशस्त्र प्रहरी बल के निगरानी तथा जांच के क्रम में भंसार से चोरी कर नेपाल आनल गेल लगभग 9,10,000 टका मूल के सामान बरामद कैल गेल अछि। वह क्रम में एक भारतीय नागरिक के सेहो पकड़ल गेल अछि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नंबर 12 गन हेडक्वार्टर बारा के गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विशाल सिलवाल के हिसाबे सीमा क्षेत्र में होवे वाला अवैध समान लौ जाके अलाव के तथा भंसार छली नियंत्रण करबाक लेल माथात के इकाई के सक्रिय बनायल गेल अछि। एहि बीच भारत के बिहार राज्य अंतर्गत पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी क्षेत्र स्थित घोड़ा सहन ग्राम पंचायत के 30 वर्षीय सिकेंद्र कुशवाहा के नियंत्रण में लेल गेल अछि। समान सहित पकड़ल गेल कुशवाहा के आवश्यक अनुसंधान तथा कानूनी प्रक्रिया आगू बढ़ावा दिन में बीरगंज भंसार कार्यालय बुझेबाक सशस्त्र प्रहरी बल के सूचना अधिकारी सशस्त्र प्रहरी नायब परीक्षक विक्रम मणि अधिकारी एके जानकारी देलन अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के नौसेना हॉर्मुज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरंग विस्फोट में ठोकरेलाक बाद एकटा मालवाहक जहाज डूबल जनौलक अछि। जारी युद्ध के क्रम में समुद्री सुरंग में ठोका कर जहाज डूबल घटना पहिल बेर सार्वजनिक भेल ईरानी पक्ष के कहब अछि। एहि बीच समुद्री यातायात संबंधी अधिकारी सब सिंगापुर में दर्ता भ दूटा मालवाहक जहाज मंगल दिन आ बुध दिन जल डमरू मध्य पार करबा क्रम में अज्ञात सामान से प्रहार में पड़ल जानकारी दिलक अछि। तई मध्य एकटा जहाज डूबल अछि त दोसर सुरक्षित स्थान में पहुँचय में सफल भेल अछि। सिंगापुर के सामुद्रिक तथा बंदरगाह प्राधिकरण के हिसाबे डूबल जहाज में रहल सब चालक दल के सदस्य के सुरक्षित रूप में बाहर निकालल गेल छल। दुनू घटना में कोनो मानवीय क्षति भेल विवरण प्राप्त नहीं भेल प्राधिकरण जनौलक अछि। प्राधिकरण एहन आक्रमण के उकसाहट रहित औचित्यहीन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के रूप में व्याख्या कयलक अछि। यद्यपि सिंगापुर में दर्ता भेल डूबल जहाज आ ईरान समुद्री सुरंग में ठोकायल बतायल गेल जहाज एकटा अछि वा नहीं अछि विषय में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं भेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास सुनि रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

हामी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ। यो केन्द्रीय प्रसारण हो। आदरणीय श्रोता, अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आज राति 11 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूबारे जानकारी।